नेत्र राख धारो हम संसार चन लगत रिया साव नानक ब्रह्म सारू लोक माला पंजवा तेरा कीता जातो नाई मैनू जो की तोए मैं निर्गुण यारे खो गुण नाई आपे तरस पे होई तरस पया मैं राम तोए सतगुर सजन मिलया नानक ना मिलया ता जीवा तन मन तीवे हरिया पौड़ी जिथे तू समरत जिथे कोई नाए उथे तेरी रख अग्नि उधर माए सुन कै जम कै दूत नाए तेरे छड़ जाए भव जल बिकमस गाओ गुर शब्दी पार पाए तिनको लगी प्यास अमृत से खाए कल में आए हो पुन गुण गोविंद गाए सब सहनो कृपाल माले साए साए फिरता कोई ना जाए जे आवे तो दे आए श्लोक महला पंजवा अंतर गुरु आराधना जीवा जप गुरना नेत्री सतगुर पेखना सरनी सुना गुरनाओ सतगुर सेती रतया दरगाह पाया ठाओ कहो नानक कृपा करे जिसनु ए वर दे जग मैं उत्तम काढ़ी विरले के महला पंजवा रखे रखना और आप उबारियन गुरकी पैरी पाए कास वारियन हो अपने यार मनोनाम सारियन साजना कै संग पौजल तारियन साकत निंदक दुष्ट खिन माहि बदारियन ते साहब की टेक नानक मनै माय जे सिमर सुख होय सगले दुख जाय ते साहब की टेक नानक मनै माय जे सिमर सुख होय सगले दुख जाय वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪ੍ਰਸਾਦੁ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਵੀਂ ਛਪੈ ਛੰਦ ਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੱਕਰ ਚਿਹ ਨਰ ਵਰਣ ਜਾਤ ਅਰਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ ਭੇ ਕੋ ਕਹਿਣ ਸਕਤ ਕਿਹ ਅਚਲ ਮੂਰਤਿ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤ ਤੋਜ ਕਹਿ ਜਾਏ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਸਾਹਿ ਸਾਹਣ ਗਣ ਜਾਹਿ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਹੀ ਪਉ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਣ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ ਤਪ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥਾ ਕਬਡ ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਣ ਸਮਤ ਪੁਜਾਹੂ ਪ੍ਰਿਆ ਛੰਦ ਨਮਸਤਵੰਗ ਅਕਾਲੀ ਨਮਸਤਵੰਗ ਕਿਰਪਾਲੀ ਨਮਸਤੰਗ ਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਭੇਖੇ ਨਮਸਤੰਗ ਲਿਖੇ ਨਮਸਤੰਗ ਕਾਏ ਨਮਸਤੰਗ ਜਾਏ ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਭੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਠਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਕਰਮ ਨਮਸਤੰਗ ਧਰਮ ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਮ ਨਮਸਤੰਗ ਧਾਮ ਨਮਸਤੰਗ ਜੀਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪੀਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਢਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨੀਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਛੇਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਗਾਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਭੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਉਦਾਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਉਪਾਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸਵੇਕੈ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਕਾਇ ਨਮਸਤੰਗ ਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰ ਕਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰ ਭਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰ ਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰ ਭੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰ ਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰ ਕਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰ ਧਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰ ਘਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰ ਧੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਲੋਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੋਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰ ਥਾਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਥਾਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਤਿਰਮਾਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਗਾਹੀ ਨਮਸਤੰਗ ਬਾਹੀ ਨਮਸਤੰਗ ਤਿਰ ਵਰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸਰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪ੍ਰਭੋਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੋਜੋਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਰੰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਭੰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਮੇ ਨਮਸਤ ਤ੍ਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਲਾਸਰੀ ਨਮਸਤੰਗ ਨਰਾਸਰੀ ਨਮਸਤੰਗ ਜਾਤੀ ਨਮਸਤੰਗ ਪਾਤੀ ਨਮਸਤੰਗ ਮਜਬੇ ਨਮਸਤ ਅਸਤਸਵੇ ਦੇਸ਼ੰਗ ਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਭੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਬਾਮੇ ਨਭਉ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ਨਭਉ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੂਪੇ ਨਮ ਸਰਬ ਭੂਪੇ ਨਮ ਸਰਬ ਕਾਪੇ ਨਮ ਸਰਬ ਤਾਪੇ ਨਮ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ਨਮ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਨਮਸਤਸ ਦੇਵੈ ਨਮਸਤੰਗ ਭੇਵੈ ਨਮਸਤੰਗ ਜਨਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੋਭਨਮੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗੌਣੇ ਨਮ ਸਰਬ ਭਾਉਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੰਗੇ ਨਮੋ ਸਰ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮਸਤਸ ਦਿਆਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਬਰਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਮਰਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਰਾਰੰ ਨਮਸਤੰਗ ਕਰਾਂ ਕਰਤਾਰੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਧੰਦੇ ਨਮੋਸਤ ਬੰਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਸਾਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਬਾਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਰਹੀਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਕਰੀਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੰਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਮਹੰਤੇ ਨਮਸਤਸਤਰਾਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਹਾਗੇ ਨਮਸਰ ਸੋਕੁ ਨਮ ਸਰਬ ਭੋਕੁ ਨਮ ਸਰਬ ਕਰਤਾ ਨਮ ਸਰਬ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਨਮ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ ਨਮ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੂਪ ਹੈ ਨੂਪ ਹੈ ਜੂ ਹੈ ਭੂ ਹੈ ਲੇਖਾ ਭੇਖਾ ਰਾਮ ਹੈ ਕਾਮ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਪੇ ਹੈ ਜੀਤਾ ਪੀਤਾ ਤਰਬਾਰ ਹੈ ਨਦਹਨ ਹੈ ਤ੍ਰਿਵਰਗ ਹੈ ਸਰਗ ਹੈ ਨੀਲ ਹੈ ਨਾਦ ਹੈ ਜੇ ਹੈ ਜਾਦ ਹੈ ਜਨਮ ਹੈ ਵਰਣ ਹੈ ਭੂਤਿਆ ਭਰਨ ਹੈ ਅਗੰਜ ਹੈ ਭੰਜ ਹੈ ਝੂਜਿਆ ਝਾਂਜਿਆ ਮੀਕਾ ਪੀਕਾ ਧੰਦ ਹੈ ਬੰਦ ਹੈ ਨਿਰਬੂਜ ਹੈ ਸੂਜਿਆ ਕਾਲ ਹੈ ਜਾਲ ਹੈ ਲਾਹ ਹੈ ਜਾਹ ਹੈ ਅਨੰਤ ਹੈ ਮਹੰਤ ਹੈ ਅਲੀ ਕਹਿਣ ਲਸੀ ਕਹਿਣ ਲੰਬ ਸਮ ਹੈ ਗਮ ਹੈ ਜਮ ਹੈ ਭੂਤਿਆ ਸੂਤਿਆ ਲੋਕੈ ਸੋ ਕਹਿ ਕਰਮ ਹੈ ਭਰਮ ਹੈ ਜੀਤਿਆ ਪੀਤਿਆ ਬਾਹ ਹੈ ਗਾਹ ਹੈ ਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ ਪੁਜਹੁ ਪ੍ਰਿਆ ਛੰਦ ਹੈ ਨਮੋ ਸਰਮਾਨਿ ਸਮਸਤ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ਭੇਖੀ ਭੇਵੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਪਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗੌੜੇ ਨਮ ਸਰ ਭਾਉੜੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਥ ਨਿਰਸੰਗੀ ਪ੍ਰਮਾਥੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮ ਮਾਨ ਮਾਨੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ ਨਮੋ ਤਾਨ ਤਾਨੇ ਨਮੋ ਨਿਰਤ ਨਿਰਤੇ ਨਮੋ ਨਾਦ ਨਾਦੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਬਾਦ ਬਾਦੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਸਮਸਤੀ ਸਰੂਪੇ ਪ੍ਰਭੰਗੀ ਪ੍ਰਮਾਥੇ ਸਮਸਤੀ ਵਿਪੂਤੇ ਕਲੰਕ ਅੰਗ ਬਿਨਾਨੇ ਕਲੰਕੀ ਸਰੂਪੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰਮ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰਮ ਸਿੱਧੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰਮ ਬ੍ਰਿਧੇ ਨਮੋ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪਾਣੇ ਨਮੋ ਅਸਤ੍ਰ ਮਾਣੇ ਨਮੋ ਪਰਮ ਗਿਆਤਾ ਨਮੋ ਲੋਕ ਮਾਤਾ ਭੇਖੀ ਭਰਮੀ ਭੋਗੀ ਭੁਗਤੇ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰਮ ਜੁਗਤੇ ਨਮੋ ਨਿਤ ਨਾਰਾਇਣੇ ਕਰੂਰ ਕਰਮੇ ਨਮੋ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇ ਦੇਵੇ ਸੁਧਰਮੇ ਨਮੋ ਰੂਗ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਰਾਗ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਾਹ ਸਾਹ ਨਮ ਭੂ ਭੂਪੇ ਨਮੋ ਦਾਨ ਦਾਨੇ ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੇ ਨਮੋ ਰੋਗ ਰੋਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਮੋ ਮੰਤ੍ਰ ਮੰਤ੍ਰੰ ਨਮੋ ਜੰਤਰ ਜੰਤਰੰ ਨਮੋ ਇਸ਼ਟ ਇਸ਼ਟੇ ਨਮੋ ਤੰਤਰ ਤੰਤਰੰ ਸਦਾ ਸਚਦਾਨੰਦ ਸਰਵ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਅਰੂਪੇ ਰੂਪੇ ਸਮਸਤ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਸਿੱਧ ਦਾ ਬੁੱਧ ਅਬਿਧ ਕਰਤਾ ਆਦੋ ਉਰਦ ਅਰਦੰ ਅਗੰ ਓ ਘਰਤਾ
परम परम परमेश्वर पुरुष भानु सदा सर्वदा सदाता दयालं चेदिय भेदिय नाम काम समस्त उपराधी समस्त स्थान तेरा दूर चात्री छंद जले है थले है तेरा जोर चाची छंद जले है थले है पीते पे है प्रभु है जू है दिश है पेशा है भुजंग प्रिया छंद अगाध अबाद आनंदी स्वरूपे नव सरमान समस्त निदाने नमस्त वंग निर्नाथे नमस्त वंग परमाथे नमस्त वंग अगंजे नमस्त वंग पंजे नमस्त वंग अकाले नमस्त वंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो सा साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोक रोके नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्वमंत्रंग नमो सर्वजंत्रंग नमो सर्वदृश्यंग नमो सर्वकृष्ण नमो सर्वरंगे त्रिपंगे अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे पिजे समस्तं प्रसिज्जे कृपालंग स्वरूपे कुकर्म प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सदंग निवासी यर्पण छंद प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अकल जोगी अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अकल त्रमंगल अकर्म सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राण सर्वंग त्राण सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवं सर्वंग पेवं सर्वंग काले सर्वंग पाले रूवाल छंद त्वय प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त जोन पुरख पार सर्वमान त्रमान दे भेववाद उदार सर्वपालक सर्वकालक सर्वकोपन काल जत्र तत्र विराज ही अवधूत रूप साल नाम ठाम न जात जाक रूप रंग न रेख आदि पुरख दार मृता जौन आद सेख देश और न पेह जाक रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा हो फैल अर राग नाम काम विहीन पेख धम न जाय सरमान सर्वत्र मानस दह मन ताहि एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक दे भेवना जान ही जेह भेद और कतेब रूप रंग न जात पासो जाने कह जेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्कर बकर फिराए चतर चक मान ही पुर तीन लोग चौदह की बिखाय जग जापी जह जाप आद देव अनाद मूर्त थाप सबह जे थाप परम रूप पनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व सबच्यो सुजयम पवगरण भंजन हारु कालहीन कला संयुक्त काल पुरखा देश धर्म धाम सु पुरु रातु धर्म धाम सु पुर परम रहत भूता लख पेसु अंग रग नरंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त काम आप रूप अमीक अनुस्तुति पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन याद रूप सूत अग हीर भागनाथ बेक पुरख पारु सर्व लायक सर्व काग सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व त्यन पेख सर्व सासना जानी जेह रूप रंग अरेख परम वेद प्राण जाकह नेत भाग नेतो कोट सिमरत प्राण शास्त्र न आवि बहु चेतो मद पार छंद तप प्रसाद गुण गण उदार महिमा पारासन भंग उपमा नांगन भव प्रकाश निस्तर नाथ आदन बाहु साहु साहु राजन राजु पारण पाण देवण देव महार इंद्रण इंद्र बालन बालु रंग करण को कालन कालन भूते अंगा बापंगात मित पारु गुण गण उदार मौन गण प्रणाम निर्भैने काम आत्त प्रचार मित गत अखंड अलिस्सा कर्मा दृसा धर्म सर्वा बरणा डंडन बाढ़ चाचरी छंद प्रसाद गोविंद भक्तन दे प्रया छंद चतुर चक्र करता चतुर चक्र हरता चतुर चक्र दाने चतुर चक्र जाने चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र परती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र माने चतुर चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय जन्मंग अजाय न चित्र न मित्राय परे पवित्र प्रतिशा अदिशा अदृशा कृषा भगवती छंद त प्रसाद कस्ते
के आछिज देसा के अभिज पेशा के अगंध करमा के अपंज परमा के अभिज लोक के अदित सोक के अवधूत वरणा के विभूत करणा के राजिंग प्रभा के त्रभंग तो जैक सोक वरण के सर्वा प्रण के जगदंग कृतिया के छत्रंग क्षत्रिय के ब्रह्मंग स्वरूप के अनुपहनुप के आदि अधि के आप के वेंक चंद्रंग भी हिंडा के एक आदि न के रोजी रजाकर ही मारे हाक पाक बया के द्यावल गावे के आप गुनाह के साहन साह के कारण कुनिंदा के रोजी देहांद है के राज करी मैं के कर्म करी मैं के सर्वंग कलिंग है के सर्वंग दलिंग है के सर्वत्र माने के सर्वत्र दाने के सर्वत्र गौनाय के सर्वत्र पौणय के सर्वत्र दिशा के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र राजा के सर्वत्र साजय के सर्वत्र दीनाय के सर्वत्र लीना के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र दिशा के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र कालय के सर्वत्र पालय के सर्वत्र हंताव के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राजाय के सर्वत्र सुखय के सर्वत्र पुखय के सर्वत्र त्राणय के सर्वत्र प्राणय के सर्वत्र दिशाय के सर्वत्र पेशाय के सर्वत्र माने सदैव प्रधानय के सर्वत्र जाप्य के सर्वत्र थाप्याय के सर्वत्र पाणय के सर्वत्र मानय के सर्वत्र इंद्राय के सर्वत्र चंद्राय के सर्वंग कलीमय के परमंग अफीमय के आकल अलामय के साहब कलामय के हुसन वजु है दमा वरुण जुए हमेश्वर सलामय सलीखत बंदामय गनी मुलसकस्त गरीबुल प्रस्त बिलंदन मकाना जिमी नुल जमाना तमी जुल तमा मै रुजल नदाना हरि फल दी मर जाक जकीना अनेकुल तरंग है भेद है भंग है जी जल नवाजे गनी मुलक राज है निरुक्त स्वरूप है तिर मुक्त भूत है पर भुगत प्रभा है संयुक्त सुगस्त संयुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है भेदी अनुप है समस्त उपराज है सदा सब साज है समस्त सलाम है सदैव काम है निर्बाध स्वरूप है गाद अनुप है ओ अंगाद रूप है नास रूप है अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्ग त्रिवादी अगन जे गादे शुभम सर्भागे सो सर्व अरणागे सो सर्वा सर्वं भागे सो सर्वा अनुरागै त्रिभुगत स्वरूप है अच्छज है छूत है कि नरक प्रणास है पृथ्वी प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है बेभुगत स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है बेभुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चात्री छंद अपंग है अनंग है अपेख है हलेख है भरम है करम है अनाद जुगाद अजय है बह है भूत्या धूत्या है अनास है दास है धंध है बंद है अभगत है बेरकत है अनास है प्रकाश है नचिंत सुनंत लेख है नचिंत सुनंत लिख है देख है लिख है भेख है ढह है गह है सम है गम है नील है नाद है अनित है सुनित है जात है जाद है चरपट छंद प्रसाद सर्वंगता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंगता सर्वंगता सर्वंगकर्ता सर्वंग प्राण सर्वंग त्राण सर्वंग कर्म सर्वंग धर्म सर्वंग युक्ता सर्वंग मुक्ता ऋषावल छंद प्रसाद नमो नरकनाशे सदैव प्रकाशे अरंगं स्वरूपे अभंगं विभूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्रन पुत्रन सत्रन मित्रन तातन मातन जातन पातन साखं श्रीका मित्तो मीक सदैव प्रभ अजाह अजाह भगवती छंद प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजिर हजूर है मेसर सलाम है समस्त कलामे के साहब दिमागे के सुन चरागे के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी देहांद है के राज करहिंद है करीम बल कमाले कुशल जमाले गरीम बल कराज है गरीब बल नवाज है हरि पुल सकान हर आसल पकान है कलंक प्रणास है समस्त निवास है अगंजल गनीम रजाय करीम है समस्त जबाह के साहब कराय के नरक प्रणास है बहस्त निवास है के सरबल गुबान है मेसर रबान है तमा मलत जी मैं समस्तल जी जह परम परमी समस्तल दिस है देसल लेख है मेसल भेख है जिमिल जबा है अमिकुल माहे करिमल कुमाल है कि जुर जमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि मित्तो सुबास है कि अज बसरूप है कि मित्तो विभूत है कि मित्तो उपसा है कि आत्म प्रभ है कि अचलंग अनंग है कि मित्तो भंग है मद भाग छंद प्रसाद
मौन मन प्रणाम गुण गर्म दाम हर बर गांधी हर नर प्रपाल अंगन प्रणाम मन मनस राम हर नर खंड बर नर मांड अनुपहनास मौन मन प्रकाश गौन गण प्रणाम जल थल मदा मन छे जंग आसन भंग कुमा पारू गात नित उधार जल थल मन दिस विस भांड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुपहनास त्रिहता त्रास आदिन बाहि कस दाहो ओंकार आदि कथनी नाद खल खंड ख्याल गुर बरकार कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनुचित गातु अजन बात अनुटन गातु अरंज बात अनटोट भंडार अनठट अपार आडीट धर्म आत टीट कर्म अनबरण अनंतो दाता महंतो हर बोल मना छंद त प्रसाद करणालय है अर कल है खल खंडन है मह मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व बारण है त्रित की धन है जग की कर्ण है मन माने है जग जन है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्व पास है सर्वना सै करुणा कर है बेसों पर है सर्वेश्वर है जगतीश्वर है ब्रह्मंडस है खल खंडस है पारती पर है करुणा कर है जपा जप है तपा तप है कृता कृता मृता मृता अमृता मृता करुणा कृत है अकृता कृता तरणी त्रिता अमतेश्वर है परमेश्वर है कृता कृता मृता मृता अजबा कृता मृता मृता है नर नायक है खल कायक है विश्वंबर है करुणालय है नप नायक है सृपायक है पंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है कलंकृता है सुबा कृता है कृता कर है हरता हर है परमात्मा आत्म बस है परमात्मा सर्व आत्म है आत्म बस है जस के जस है पुजहं प्रयात छंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्री नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग सात रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो ज्योत ज्योति नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्र नादन बेपूते कलंकर रूपे अलंकर लगे नमो आशा से नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी कामे कचरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज पंज अलख पक अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अगा अटा अनाथे परमाथे जो नियमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे न रेखे अकर्म भंग न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्म भरम गंजे अलेखे पुजंग प्रयात छंद नमस्त्र प्रणामे समस्त्र प्रणासे अगंजल नामे समस्त्र निवासे निरकामंग बेपूते समस्त्र स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सो धर्मंग बेपूते सदा सचदानंद स्तंग प्रणासी करि मुल्क निंदा समस्त्र निवासी अजाय बेपूते गजाय बिगनीमे हरियंग करियंग करिमल रहीमे चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते सजीव पहु सबं सर्वदा सर्वयुक्ते

साध समूह प्रसन्न फिर जग सत्र सभा अवलोक चपांगे मानव इंद्र गजेंद्र नाद जौन तलो को राज करांगे कोट इशनान गजादक दान अनेक स्वयं प्रसाद बरांगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सची पत अंत फसे जम पास परांगे जे नार श्री पत की प्रस है पागो ते नार फेरना देह तरांगे।

पर बाहे कहें कि लाज अस गोबिंद दास तुहारो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

आनंद हुआ सतगुरु में पाया। ए मन मेरी आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरी दुख सब सारण अंगीकार ओह करि तेरा कर सब सवार डाऊ सब नंगलन सम्राट स्वामी सो के मन हम सारी कह नानक मन मेरी सदा रहो हर नाले साची साहिबा क्या नाहीं कर तेरा ही करता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे।

बसंत की वार महल पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम ध्याय कै हो हरिया पाई कर्म लखन ते पाई है एहो रुख सुहाई वन त्रित्र पवन।

बसंत की वार महल पंजवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद हर का नाम तिहाय कै हो हरिया पाई कर्म लिखन तै पाई है एहो रुत सुहाई वन त्रिण त्रिपवन मौलिया अमृत फल पाई मिल साधु सुख उपदे लत